अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भक्त की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर है, वह प्रभु के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। भगवान से दिव्य चक्षु पाकर वह उस अति तेजस्वी दिव्य शस्त्रों व वस्त्रों से युक्त विशाल काय बहुआयामी स्वरूप को देखकर रोमांचित एवं कदाचित भयभीत हो उठता है।

आपको मित्र व सखा समझा, आपका उपहास किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे विश्वमूर्ते, मुझ पर प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाओ।

जनार्दन अपना सौम्य रूप दिखलाकर प्रिय भक्त को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ इस स्वरूप के दर्शन किसी वेद ज्ञान, तप, दान अथवा पूजा से नहीं, अपितु मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: वराह पर्वतमाला तेरा उद्गम स्थान, श्रृंगेरी हरिहर हम्पी तेरे तीर स्थान, धार्मिक एकता तेरा नारा, सांस्कृतिक क्षमता मंत्र प्यारा।
1: वरदा वेदवती हंद्री, वेणी भीमराती मलपहरिणी आदि पुण्य धाराओं को लेकर मुक्ति क्षेत्र में कृष्णा से तेरा संगम है कितना हृदयंगम।

0: तुम भद्रा, तुम्हारा नाम लेते ही 14वीं, 15वीं तथा 16वीं सदियों में दक्षिण भारत में बसे उस भूतल स्वर्ग विजयनगर साम्राज्य की याद आ जाती है, जिसकी राजवीथियों में मोती पन्ने जैसी बहुमूल्य रत्न राशि बेची जाती थी। चांदी सोने से आभूषित वे राज प्रासाद, वेद उपनिषदों के अनुरणन में गुंजित मंदिर, संगीत नाट्य कला के निरंतर उपासना से महिमान्वित वे कला मंडप,
1: और हाँ, याद आ जाती है साहित्य समरांगण सार्वभौम श्री कृष्णदेव राय के सक्षम नेतृत्व में निश्चिंत प्रजा के सुख जीवन की, अपने तीरों पर पनपती सांस्कृतिक समृद्धि को गर्व से निहारती तुंगभद्रा की जलधाराओं की।
0: कर्नाटक की जनता तुंगभद्रा की उन अमृतमय धाराओं की नेति नेति प्रशंसा करती रहती है, गंगा स्नानम तुंगापानम कहकर।
1: साधारण जनता ही क्यों, बड़े बड़े विद्वान व पंडित भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। विजयनगर साम्राज्य के सुविख्यात तेलुगु कवि तेनाली रामकृष्ण ने कहा,

0: नदी सहे सागर संग मिछा को छोड़कर तुम कृष्णा नदी में जा मिली और अपना अस्तित्व खो बैठी। अगर सागर राजा तुम्हारे संगम सुख का पात्र हुआ होता तो वो कावेरी यमुना जैसी नदी कन्याओं का नाम तक न लेता।
1: तुंगभद्रा के पानी की वैद्यपरक विशेषता कुछ और ही है। इसे बता रहे हैं सुप्रसिद्ध संशोधक डॉक्टर तिरुमल रामचंद्र।
2: రాధినిఘంటు అనే వైద్య వస్తుగుణ కోశంలో తుంగభద్రాజలం స్వాదు స్నిగ్ధం ప్రోక్తం తథా గురు
3: ఆయుర్వేద వైద్య గ్రంథ రాజ నిఘంటు మే కహా గయా హై కి తుంగభద్రా కే పానీ మే స్థిత ఔషధీయ గుణో కే కారణ ఇస్కే పానీ కే నిరంతర సేవన సే అల్సర్ పిత్త దోష రక్త స్రావ జైసే అనేకో రోగ దూర్ కియే జా సక్తే హై
0: ఇన్ విశేషతాఓ కా మర్మ క్యా హై తుంగభద్రా तू बता दे, तुझ पर निशावर ये जनावास कैसे हुआ तू बता दे।
4: मेरी जलधाराओं की विशेषता का रहस्य चाहिए तुम्हें तो सुनो। हिरण्याक्ष के क्रूर बंधन में जकड़ी अपनी प्रिय सखी भूदेवी की रक्षा करने महाविष्णु वराह अवतार लिए उस दानव संघार के बाद विश्राम करते हुए विष्णु देव के दोनों खगों पर से जो श्वेत निकला वही तुंगभद्रा कहलाया, यानी कि मैं उस अवतार गाथा प्रणय गाथा की साक्षी हूं। मैं
5: अपने उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के वराह पर्वत की पश्चिमी घाटियों में से कदम बढ़ाती ये सरित कन्या तुंगा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पावन श्रृंगेरी क्षेत्र में श्री शारदम्बा का तथा आगे शिमोगा में शिव जी का दर्शन कर लेती है। फिर तीर्थहल्ली में परशुराम की कुल्हाड़ी से बनी घाटी के तीर्थ को लेकर कूड़ली की तरफ चलती है अपनी छोटी बहन भद्रा की प्रतीक्षा में।
6: तुंगा की छोटी बहन भद्रा समीप ही के बाबा बडून पर्वतमाला में जन्म लेकर होन्नूर को पार करती बड़ी उत्सुकता से पहुंचती है कूड़ली अपनी बड़ी बहन तुंगा से मिलने।
4: हम दोनों का वो संयुक्त रूप अभीप्सित हितदायिनी तुंगभद्रा कहलाया, हमारी इस अपूर्व एकता के प्रतीक ठहरे मेरे तीरों पर बसे विविध तीर्थ स्थान। सबसे पहला क्षेत्र है हरिहरा।
5: गुहासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा के दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी। वर्षों बाद ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। उसने वर मांगा पशु पक्षी दानव मानव आखिर हर या हरि तक से भी उसे प्राण भय न होने का और पाया भी। बाद में उसकी क्रूरता के शिकार बने देवता लोग जाकर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के पैर पड़े उस राक्षस से उन्हें बचाने के लिए। आखिर हर और हरि के सम्मिलित अवतार हरिहरेश्वर द्वारा उस राक्षस का वध हुआ और तभी से ये क्षेत्र गुहारण क्षेत्र और हरिहरेश्वर भी पुकारा जाने लगा।
6: इतिहास पुराण के अलावा तुंगभद्रा भारत जाति की राजनीतिक गतिविधियों की भी साक्षी रही। भारत के स्वातंत्र प्रदाता व जाति पिता महात्मा गांधी के स्मृति अवशेष 1948 में 15 फरवरी के दिन हरिहरा क्षेत्र के तुंगभद्रा में निमज्जित किए गए।

हरिहरा के बाद मेरी यात्रा उस शुभंकर प्रदेश किष्किंधा की तरफ चली, जहां सीता वियोग में दुखित श्री रामचंद्र को सीता का कुशल समाचार मिला। ये वो प्रदेश है जहां समुज्ज्वल वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक महातपस्वी विद्यारण्य के निर्देशन में विजयनगर महासाम्राज्य की स्थापना हुई थी।

धार्मिक एकता, सांस्कृतिक क्षमता और ऐतिहासिक मान्यताओं का सुंदर साकार रूप था विजयनगर। कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक तथा पूर्व पश्चिम सरहदों तक के सुविशाल भूमंडल में विस्तृत विजयनगर।

0: सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री कृष्ण स्वामी ने अपने ग्रंथ सोर्सेज में इसका उल्लेख किया कि विजयनगर राजा वैष्णव होते हुए भी अपने राज में अन्य धर्मावलंबी नायक तथा सेनापतियों को रखा करते थे। मुसलमानों के लिए नगर में मस्जिदें थीं।
1: विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी सुविख्यात था। राजधानी हम्पी संगीत, साहित्य, शिल्प, मूर्ति, स्थापत्य इत्यादि अनेक कलाओं का आगार था। मुझे लग रहा था कि कुबेर की अमरावती मानो स्वयं स्वर्ग से उतर आई है वहां पर।
2: अब कुछ पर्यटकों से मिलते हैं।
3: I'm from Germany. I was told by an Israelian girl.
4: मैं जर्मनी से आया हूँ। इसराइल से आई हुई एक और महिला पर्यटक ने मुझे हम्पी के दर्शन करने की सलाह दी। मेरे लिए यह एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ भारतीय संस्कृति, सभ्यता व जन जीवन को नजदीक से देखने का अवसर मिला।
5: I enjoy Hampi very much because of the beautiful landscape.
2: यहाँ के सुंदर खंडहरों के बीच चलते फिरते देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में मालूम होता कितना ही अच्छा लग रहा है। आई लव इट।
1: लेकिन सन 1565 ईस्वी की राक्षस तंगड़ी युद्ध ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। मेरे ही पुत्रों के बीच राज्य लिप्सा की नागिन का विष, निर्जीव नंदन वन, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मिटाने के प्रयत्न। इसका नतीजा क्या हुआ? यहां खड़े हुए शोकाकुल खंडहर, आज मेरी स्थिति नीरवता के बीच मौन यात्रा।
6: तुम्हारी वर्तमान विजय गाथा के बारे में पूछना तो हम भूल ही गए, तनिक बताओ तो सही।
1: जिस तरह मैंने इतिहास में प्रजा कल्याण व संस्कृति के उत्थान के लिए सभी उत्साही राजाओं को सहयोग दिया था, उसी तरह आज भी मैं आवश्यकता अनुकूल चलती आ रही हूँ। इसीलिए विकास संबंधी विविध क्षेत्रों में प्रजा को अपना सहयोग देती आ रही हूँ।
0: स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने की परियोजना का श्री गणेश किया था। सन 1940 में सर आर्थर होप के हाथों कर्नाटक के होसपेट शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बृहद जलाशय का शिलान्यास हुआ
2: और 1953 तक इस बांध का निर्माण पूरा हुआ। स्वतंत्र भारत के स्वर्णिम सपनों को साकार देखने की सर्वप्रथम स्फूर्ति तुंगभद्रा ने ही दी। इस बांध से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं श्री सी सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के मुख्य अभियंता।
7: Main dam in masonry across the river, 5,712 feet in length, of which 2,300 feet in the middle portion.
8: Tungabhadra बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है।

0: वहां के खेतों को सिंचती हुई।
1: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है
2: 10 लेंथ ऑफ व्हिच 2300 फीट इन द मिडिल पोर्शन।
0: तुंगभद्रा बांध की लंबाई 5712 फुट है और उस पर 2300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है। वहां के खेतों को सींचती हुई।
1: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है 133 टीएमसी फीट।
3: इस बांध द्वारा कर्नाटक के रायचूर तथा बल्लारी जिलों में 0.30 लाख हेक्टर की भूमि सिंचाई की सुविधा पा रही है। इस नदी के तीर प्रांतों की मिट्टी मुख्यतया लाल व काली मिट्टी है, जो धान, गन्ने, मूंगफली, कपास, केले आदि के पैदावार के लिए लाभदायक है।
1: अरे हाँ, उन लहलहाते खेतों की तरफ देखो, लग रहा है कि खुशहाली के मेले लगे हुए हैं वहां। तुंगभद्रा की छत्र छाया में कितने खुश और निश्चिंत हैं वे लोग।
3: और नदी योजना की सफलता के बारे में किसानों के विचार। श्री शंकर गौट, किसान संघाध्यक्ष व पूर्व विधायक।
4: ये तुंगभद्रा ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ
5: ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ और व्यापारिक फसलें जैसे कपास, मूंगफली, सूर्यकांति भी हो रही है।
3: 70 साल के अनुभवी किसान श्री एमवी नायक, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा हरिहर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष।
6: तुंगभद्रा नदी तटाक सुमार 4-5 सक्रिय कंपनी।
7: कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा के किनारों पर भद्रावती, शिवमोग्गा, हरिहर, दावणगेरे जैसे जगहों पर चीनी के कारखाने हैं और कई लोग इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं।
1: इस पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा बिजली उत्पादन में तथा मछली पालन में भी किया जा रहा है।
3: श्री सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के अभियंता।
2: एंड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर फॉर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 99 मेगावाट्स द प्रोजेक्ट वाज टेकन अप इन 1945 एंड कंप्लीटेड इन 1953।
0: जल विद्युत के उत्पादन के लिए 1945 में तुंगभद्रा बांध परियोजना का संकल्प हुआ और 1953 तक यह पूरा हुआ। अब यहाँ बांध के दोनों तरफ 4 यूनिट तथा 9 मेगावाट के दो बिजली घर है और हम्पी के पास इसी क्षमता का एक और बिजली घर है।
1: इन बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली से आंध्र तथा कर्नाटक की प्रजा लाभ उठाती है।
3: तुंगभद्रा जलाशय का विस्तार 378 वर्ग किलोमीटर है, जो मछली पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस केंद्र से प्रतिवर्ष 2000 टन से भी अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। आंध्र, केरल व कलकत्ते की प्रजा भी इन लाजवाब जल पुष्पों का स्वाद लेती है। सुनिए ये मछुआरे क्या कह रहे हैं। श्री कारे सत्तैया।
8: वो कटला मिर्गालो कावन कार्पो
9: कटला मिर्गालू जैसे तरह तरह की मछलियां यहां पर मिलता है। 64 में मछली पकड़कर टोकरे में रखकर गांव को जाकर बेचा करते थे। हमको 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया मिलता था। अब 20 रुपया, 30 रुपया मिलता है। अब हम बच्चों को स्कूल को पढ़ाई के लिए भी भेजता है और मकान भी बना लिया है।
1: तुंगभद्रा बांध के यंत्र समूह की तैयारी में सुविधा के लिए सन 1948 में तुंगभद्रा प्रोजेक्ट वर्कशॉप तथा मशीनरी वर्कशॉप का

0: आरंभ हुआ था। इसमें पहली बार वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया और बांध के फाटकों का निर्माण हुआ। बांध की समाप्ति के बाद सन 1967 में ये एक सार्वजनिक उपक्रम बना और धीरे धीरे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ये संस्था अपनी सेवा प्रदान करती है।
1: इस वर्कशॉप के कार्यकलापों का विवरण दे रहे हैं तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक श्री एसपी त्रिपाठी।
2: कंपनी की स्थापना के समय इसके कर्मचारियों की संख्या थी 405 और अब आज 1993 में इनकी संख्या 1045 है। इस तरह कंपनी ने कई लोगों को रोजगार देने में साथ दिया। जब कंपनी 1960 में आरंभ हुई थी उस वक्त इसका उत्पादन मूल्य था 38 लाख रुपया और पिछले साल उत्पादन हुआ 33 करोड़ 7 लाख रुपये का, अर्थात स्थापना समय से आज तक की उत्पादन में करीबन 100 गुना वृद्धि। और इसका शुभारंभ हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से ही हुआ।
3: हॉस्पेट से आगे बढ़ती हुई मैं बल्लारी व रायचूर जिलों में से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। वैसे तो पुराने व आधुनिक अभियंताओं ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बसवन्ना, रामसागर, कोरिगल, शिवपुर और गंगावती आदि बहुत सारी नहरें बनाकर मेरे पानी को उस भूखंड पर बहाया जहां मैं नहीं पहुंच सकती थी। इस तरह मेरे पानी की सार्थकता और बढ़ी। वैसे आगे चलते चलते मैंने कर्नूल जिले में प्रवेश किया।
1: इस नगर के एक छोर पर तुंगभद्रा नदी है तो दूसरे छोर पर तुंगभद्रा मशीनरी एंड टूल्स लिमिटेड संस्था, दोनों जीवनदायिनी हैं। इसने भारत के गौरव में 4 चांद लगाए हैं। इस संस्था के बारे में बता रहे हैं मैनेजर श्री के रामकृष्णय्या।
4: 1991 ఆర్డర్ 1993 కల్ సప్లైస్ అంతా కంప్లీట్ చేశాము। దీనికి గాను మాకు 1990-91 సంవత్సరం
5: విదేశం మే కదం రఖనే కా గౌరవ్ హమే మిలా 1991 మే। కాగజ్ ఉద్యోగ్ కే లియే आवश्यक सामग्री की पूर्ति हम करते हैं।
4: पेपर मशीन
5: इसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल से हमें विशिष्ट निर्यात अवार्ड भी मिला है।
4: टोटल एक्सपोर्ट
5: इसी तरह अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका से कागज मशीन निर्यात के लिए ऑर्डर मिले हैं। हमारे हाथ में अब 36 अरब डॉलर के ऑर्डर्स हैं।
0: कर्नूल नगर में 500 साल पुरानी सैयद शाह मियां साहब कादरी की दरगाह,

0: कर्नूल जिला आदविनी तालुक से 52 किलोमीटर की दूरी पर तुंगभद्रा के किनारों पर बसा मंत्रालयम पुण्य क्षेत्र। यहाँ पर सभी धर्मावलंबी स्वामी जी की समाधि वृंदावन के दर्शन के लिए आते रहते हैं। कहा जाता है कि महाभक्त शिरोमणि राघवेंद्र स्वामी समाधि ही में से अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं भी। स्वामी जी की समाधि की एक और विशेषता यह है कि यह भूमि उस समय के आदवेनी नवाब सिद्दीक मसूद खान की भेंट थी।
1: मेरी यात्रा अब मुक्ति की तरफ। संगमेश्वर नामक क्षेत्र पर कृष्णा नदी में मेरा सम्मेलन। मुक्ति की ओर चलते चलते आखिरी बार फिर एक बांध सुंकेसला में बंध कर करीब 3 लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा देती हूँ।
0: अरे वाह, एक कपूर जैसे, सुगंध के वृक्ष जैसे बारंबार लोक कल्याण के लिए तुम्हारा यह आत्मसमर्पण।
1: हम नदियों का जीवन ही मानव सेवा के लिए है। ग्राम, नगर और राज्य की सीमाओं को पार कर भारतीय एकात्मता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की व्याप्ति करना हमारा जीवन लक्ष्य है। कल, आज और कल भी।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव एक नट का रूप धरकर पर्वतराज हिमवान के यहां गए। देवी पार्वती को दिए वचन के अनुसार हिमवान और मीना से पार्वती का हाथ मांगा। वे दोनों महाप्रभु को नहीं पहचान पाए और बहुत क्रोधित हुए। नारद के अनुरोध पर शिव जी अपने असली रूप में आ गए। हिमवान और मीना सहर्ष शिव पार्वती विवाह के लिए तैयार हो गए। भारी उत्सव के बीच विवाह संपन्न हुआ। महाक्षमादानी देवाधिदेव ने कामदेव को भी पुनः जीवित कर दिया। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी शौनक जी, कैलाश पर कई दिन उत्सव मनाने के पश्चात महादेव और महादेवी प्रणय आनंद उठाने एक मनोरम निर्जन स्थान की ओर चले गए। देवता हाथ जोड़े शिव पुत्र के जन्म की बात जोने लगे।
2: महाभाग सूत जी, शिव पुत्र तथा तारकासुर वध का संदर्भ पहले भी अनेक बार उभरा है। ये तारकासुर कौन था?
1: शौनक जी, पूर्व काल की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के एक पुत्र थे ऋषि कश्यप। दक्षराज ने उन्हें अपनी 13 पुत्रियां ब्याही थी। इनमें दिति और अदिति ऋषि कश्यप की प्रमुख पत्नियां थीं। परंतु दोनों बहनों की प्रकृति एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थी।
2: वो कैसे सूत जी?
1: देवराज इंद्र की माता अदिति अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु उनकी बड़ी बहन दिति बहुत आसुरी स्वभाव की थी। इंद्र को नीचा दिखाने के लिए वो एक अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र चाहती थी।
2: तो उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किया सूत जी?
1: कश्यप ऋषि के कहने पर उन्होंने

0: 10,000 वर्ष का घोर तप किया। इससे उन्हें पुत्र रूप में वज्रांग नाम का महाबलशाली दैत्य प्राप्त हुआ। उसने इंद्रलोक जीतकर इंद्रतक को एक स्तंभ से बांध दिया,
1: देवेंद्र को परास्त कर दिया। फिर क्या हुआ सूत जी?
0: परमपिता ब्रह्मा वज्रांग के पास गए, उससे इंद्रदेव को बंधन मुक्त करने को कहा। वज्रांग ने ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए इंद्र को स्वतंत्र कर दिया। इसके पश्चात वज्रांग ने राजपाट त्याग दिया और सतोगुण अपना लिए।
1: परंतु सुना है वज्रांग पत्नी की आकांक्षाएं और आसुरी प्रवृत्ति अपनी सास से भी कहीं अधिक प्रबल थी। उसी ने तारक नामक पुत्र को जन्म दिया।
0: हाँ शौनक जी, तारक ने दैत्य माता दीति और अपनी मां से देवताओं के सर्वनाश के लिए तपस्या की अनुमति मांगी। दोनों ही ने उसे प्रसन्नता पूर्वक परमपिता ब्रह्मा की आराधना की आज्ञा दे दी।

0: प्रसीद, हे ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद। हम जानते थे ब्रह्मदेव कि हमारी तपस्या से प्रसन्न हो आपको हमें दर्शन देने ही होंगे।
1: वज्रांग पुत्र तारक, तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हें दर्शन दिए हैं?
0: यही तो आप देवताओं की क्षीणता है, आप किसी की भी भक्ति से प्रसन्न हो तुरंत उसे वरदान देने पहुंच जाते हैं।
1: ब्रह्म भक्त तारक, इसे हमारी क्षीणता नहीं उदारता समझो। अपना अहंकार त्यागो और मनवांछित वर मांगो।
0: मुझे दो वर प्रदान करें ब्रह्मदेव। पहला, कि आपके रचे हुए इस संसार में मुझसे अधिक बलवान और तेजस्वी और कोई ना हो।
1: तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो तारक।
0: दूसरा, मेरी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों ना हो, ना आपके, ना विष्णु के, और ना ही संहारकर्ता शिव के।
1: वज्रांग पुत्र तारक, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे यहां से जाना तो पड़ेगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं तुम्हें यह वरदान दे भी दूं तो मृत्यु का ग्रास तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कहो, कैसी मृत्यु चाहते हो?
0: ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे मात्र शिव का औरस पुत्र ही मार पाएगा।
1: बस इतना सा वरदान? तथास्तु। दिया वज्रांग पुत्र तारक, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया।
0: अरे ब्रह्मा, तुम देवता वास्तव में मंदबुद्धि हो, ये जानते हुए कि वो योगी शिव विवाह के बंधन के विरुद्ध है, तुमने मुझे ये वरदान देकर अमर बना दिया है।
2: अमर बना दिया है ब्रह्मा।

0: मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। दैत्य माता दिति, गुरु शुक्राचार्य, सुना सुना आपने?
1: हाँ वत्स तारक, मैंने सुना, परंतु इतनी सरलता से उन्होंने ये वरदान

0: कैसे दिया? अवश्य ही इसके पीछे कुछ
1: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको देवताओं के वरदान के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा क्या दिखाई देता है? तारक ने घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया है, उसे वांछित वरदान तो मिलना ही था।
0: आप ठीक हो सकती हैं दैत्य माता दीदी, परंतु मैं भी देवताओं को भली भांति जानता हूँ। दैत्यों को वरदान देते समय कुछ ना कुछ अपने लिए तो बचा ही रखते हैं। तारक, ब्रह्मा के वरदान से तुम अमर तो हो ही गए हो। मैं तुम्हें संपूर्ण असुर साम्राज्य का राजा घोषित करता हूँ।
2: शुक्राचार्य गुरु,
0: आज से तुम तारकासुर नाम से प्रसिद्ध होगे।
1: पौत्र तारकासुर, आज से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, देवताओं का विनाश।

0: विष्णु हरे, महाप्रभु की इस लीला का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा।
1: हाँ विधात, उधर तारकासुर पुनः इंद्रलोक पर आक्रमण की योजना बना रहा है।
0: एक बार तो मैं उसे समझा बुझाकर इंद्रासन त्यागने पर विवश कर चुका हूं। तब वो पृथ्वी के शोणित नगर में जा बसा था, परंतु अब उसमें इतना साहस और अहंकार भर गया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाला।
2: तो हम क्या करें प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें इस संकट से उबारिए।
0: सूर्यदेव, संकट निवारक तो मात्र सदाशिव ही हैं, हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा।
1: परंतु ब्रह्मा जी, उनकी प्रणय लीला भंग करना क्या?
0: श्रीहरि, वहां जाकर हम शिव वंदना करेंगे। महाप्रभु अंतर्यामी हैं, हमें आया जान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। चलिए देवतागण, चलिए
3: चलिए।

0: प्रिय ब्रह्मदेव, प्रिय श्री विष्णु, हम आपके यहां आने का प्रयोजन जानते हैं। देवताओं पर आई विपदा का भान है हमें, परंतु हम विवश हैं। पुत्र उत्पत्ति के लिए देवी पार्वती की मनस्थिति अभी उपयुक्त नहीं है, वे सुप्तावस्था में हैं।
1: परंतु देवाधिदेव, तारकासुर नामक समस्या का तुरंत निराकरण आवश्यक हो गया है। कितने ही देव पुत्रों को वो निगल गया है। देव माताओं के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह चली है। संपूर्ण त्रिलोकी तारकासुर से त्रस्त है।
2: हे महादेव, अब इस जगत की रक्षा आपके पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, मैं श्री ब्रह्मा और स्वयं आप तारकासुर के समक्ष प्रभावहीन है। महाप्रभु, तारकासुर के अत्याचारों का उत्तर मां

0: पुत्र आपका औरस पुत्र ही दे सकता है और वो उसका वध करके।
1: विष्णु हरे, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता।
2: महाप्रभु, आप ही विधि हैं, आप ही विधान हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता।
1: अर्थात तारकासुर वध के लिए हमें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज प्रदान करना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा, देवताओं।

0: सूर्यदेव,
1: हाँ
0: देखिए तो कैसा दिव्य बीज उत्पन्न हुआ है।
1: हाँ इंद्रदेव, इसका तेज और ताप तो मुझसे भी सहस्त्र गुणा अधिक है।
0: इसकी उष्णता तो सबको विचलित किए दे रही है।
2: देवतागण लीजिए, पुत्र उत्पत्ति के इस बीज को ग्रहण कीजिए।
0: देवादिदेव, इस उत्तम बीज को धारण करने की क्षमता त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। देवादिदेव, इसे छूते ही व्यक्ति भस्म हो जाएगा।
2: इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सबके आग्रह पर मैंने ये बीज उत्पन्न कर दिया है। किसी न किसी को तो इसे ग्रहण करना ही होगा, ये व्यर्थ नहीं जा सकता।
3: देवाधिदेव, प्रभु देवी गंगा को आदेश दे, वे इस बीज को ग्रहण करें। उनका शीतल जल ही इस बीज के तेज और ताप को सहन कर सकता है।
4: विजया, ये तो अनर्थ होने जा रहा है।
5: हाँ जया, शिवपुत्र प्राप्ति का बीज देवी पार्वती के स्थान पर कोई और ग्रहण करने जा रहा है।
4: हमें शीघ्र ही देवी की तंद्रा भंग करनी होगी।
5: चल, शीघ्रता से चल, कहीं विलंब न हो जाए। चल।
2: गंगे, देवी गंगे,
6: आज्ञा महादेव।
2: गंगे, इन देवताओं के आग्रह पर आप ये बीज ग्रहण करें। अपने निर्मल पवित्र जल में इसे रख, इसे शिव पुत्र का रूप प्रदान करें।
6: परंतु हे शिव शंकर, इस बीज पर मेरा अधिकार नहीं है।
2: गंगे, नियति ने आपको यह अधिकार सौंपा है। हम ही नियति हैं। शिव पुत्र की उत्पत्ति होनी ही है, यही नियति है। गंगे,
3: नियति अर्थात शिवाज्ञा देवी, शिवाज्ञा टाली नहीं जा सकती। प्रभु की श्लोक कल्याणकारी लीला का निमित्त आप बन रही हैं, ये तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है।
6: परंतु किसी से उसके मातृत्व का अधिकार छीन लेना गर्व का विषय नहीं होता परमपिता।
3: परंतु गंगे, शिवाज्ञा का पालन करना अवश्य गर्व का विषय है। श्रीहरि सत्य कह रहे हैं गंगे, आपके इस पाप नाशक कार्य से असंख्य प्राणियों का जो उद्धार होगा वो तो और भी बड़े गर्व का विषय है।
6: जैसी सर्वेश्वर की इच्छा। नाथ, लाइए लाइए वो बीज, मैं ग्रहण करूंगी। ये तो भला हो सखी जया और विजया का जो मेरी तंद्रा भंग कर दी, अन्यथा लाइए महाप्रभु दीजिए। क्या हुआ, आप सब देवतागण चुप क्यों हैं?
2: पार्वती, वो बीज तो हमने देवी गंगा को दे दिया है।
6: क्या, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? गंगा को? कोई बात नहीं, गंगा मेरी बहन है, मैं अभी जाकर उनसे बीज ले आती हूँ।
2: देवी पार्वती, हम देवता दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं मांगते। इससे दान की महत्ता और दान की हुई वस्तु का प्रभाव मंद हो जाता है। बीज का प्रभाव मंद हो जाने से वो तार

0: नरकासुर वध करने योग्य शिव पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
1: ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अरे देवताओं, आप मेरी तंद्रा भंग होने की प्रतीक्षा तो करते। आपने एक माँ से उसके मातृत्व का अधिकार छीना है, मुझे वंध्या बना डाला। ये अक्षम्य अपराध है, आपको दंड मिलेगा। आज से सभी देवियां पार्वती की ही भांति वंध्या हो जाएं।
0: पार्वती, आपने देवियों को ये कैसा श्राप दे डाला? इसे वापस ले लीजिए।
1: क्षमा करें नाथ, यदि महादेव अपना दान वापस नहीं ले सकते तो महादेवी भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। आओ जया, आओ विजया।
2: जी देवी। देवताओं को ये श्राप देकर आपने उचित ही किया महादेवी।
3: हाँ जया, हमारे प्रभु के भोलेपन का लाभ उठाकर जब तब उनसे उचित अनुचित सब करवा लेते हैं।
2: परंतु जया, विजया, हमारे मातृत्व रस को तो उन्होंने सदा के लिए सुखा डाला।
3: देवी पार्वती, आप तो जगत की माँ हैं, माँ का मातृत्व रस कभी नहीं सूखता, क्यों विजया?
2: हाँ जया, देवी पार्वती, हमें विश्वास है कि शिव पुत्र जैसे ही आपकी गोद में आएंगे आप उन्हें अपने मातृत्व जल से भिगो डालेंगी।
3: संभवतः तुम ठीक कह रही हो विजया, मातृत्व ही तो एक स्त्री का बल होता है।
2: आइए देवी, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए।
3: ठीक है।

0: जया जी देवी, तुम चिंतित से इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथ के जलपात्र से जलधार भी भूमि पर ही गिर रही है। देवी, चिंतित तो मैं हूँ। आप स्नान कर रही हैं? यदि कोई आ गया तो? कैसे आएगा? द्वारपाल शिवगण प्रहरी तो हैं?
1: नहीं देवी, द्वार पर कोई प्रहरी नहीं है।
0: ऐसा क्यों विजया?
1: देवी, जब से आपने देवताओं को श्राप दिया है, तभी से सभी शिवगण आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप किसी बात पर उन पर क्रोधित ना हो उठे। इस भय से वह आपके प्रासाद से ही दूर रहने लगे हैं।
2: पार्वते, देवी पार्वते।
0: अरे, ये तो स्वयं महादेव ही सोर आ रहे हैं। जा, उन्हें शीघ्रता से वहीं जाकर रोक जाया। मेरा स्नान अभी पूरा नहीं हुआ है।
3: जी देवी, अभी जाती हूँ। रुकिए, तनिक रुकिए महाप्रभु।
2: जया, ये क्या? आप हमें ही भीतर जाने से रोक रही हैं?
3: नहीं महाप्रभु, नहीं। वो बात ये है प्रभु कि देवी पार्वती अभी देवी पार्वती।
2: कहो जया, शीघ्र कहो। देवी पार्वती क्या क्या हुआ देवी पार्वती को?
3: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवाधिदेव। देवी पार्वती का स्नान अभी पूर्ण नहीं हुआ प्रभु, इसलिए आप अभी।
2: तो ये बात है। ठीक है, हम देवगणों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। वे सब देवी पार्वती के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। स्नान पूर्ण होने पर हमें सूचित कर देना।
0: जो आज्ञा महादेव।
3: बच गई जया, आज तो तू महादेव के क्रोध से बच गई, परंतु इस प्रकार उन्हें रोककर कब तक बच पाएगी?
4: अरे जया, क्या बड़बड़ाती आ रही है तू?
3: देखा देवी पार्वती, जिस बात का भय था वही हुआ। द्वार पर शिवगण की अनुपस्थिति में स्वयं महादेव अंदर चले आए।
4: अरे सखी जया, अगर द्वार पर शिवगण होते भी तो उनमें महादेव को रोकने का साहस कहाँ होता? वे तो सभी देवाधिदेव के ही गण हैं। उन्हीं की

0: संख्या से चलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसे हम पार्वती गण कह सकें, जो मात्र देवी की आज्ञा माने और महाप्रभु से भी भय न खाए।
1: तो तुम क्या चाहती हो विजया?
2: देवी पार्वती, आप कोई ऐसा बलशाली द्वारपाल नियुक्त करें जो मात्र आपकी आज्ञा माने, ताकि हम अबला नारियां शिव भय से मुक्त हो जाएं।
1: बस इतनी सी बात? लो, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ।
0: देख, देख तो जया, देवी अपने शरीर से उत्पन्न मैल से एक पुतला बना रही है।
3: हाँ, अब उस पुतले को भूमि पे रखकर उसके कान में शिव मंत्र फूंक रही है।

0: हाँ विद्या, और पुतले ने एक अति प्रभावशाली बालक का रूप ग्रहण कर लिया।
1: बालक के मुख पर देवी पार्वती का तेज चमक रहा है, गौर वर्ण, उन्नत मस्तक, और देख तो जया, बालक की भुजाएं कितनी बलिष्ठ है। और विद्या देख, ये तो जन्म से ही अति बलशाली दिख रहा है। बालक को देखकर देवी पार्वती के मुखमंडल पर भी कैसे वात्सल्य भाव उमड़ रहे हैं। देख देख, बालक देवी के समक्ष नतमस्तक हो रहा है।
2: प्रणाम माते, मुझे बताएं मैं कौन हूँ?
3: तुमने मुझे माँ कहा है तो निश्चय ही तुम मेरे पुत्र हुए वत्स।
2: मेरा नाम क्या है माते?
3: पुत्र, तुम पार्वती के एकमात्र गण हो। तुम्हारे पिता शिव मेरे ईश हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ।
0: उत्तम, अति उत्तम देवी। वैसे भी ये मोहक बालक गणों के ईश्वर ही प्रतीत हो रहे हैं।
3: सखी जया, जा तो भीतर से पुत्र गणेश के लिए सुंदर वस्त्राभूषण तो लेकर आ।
0: अभी लाई देवी।
3: विजया, आज्ञा देवी, सिंदूर तो दे, मैं पुत्र गणेश का शिव तिलक तो कर दूं।
0: ये लीजिए देवी।
3: ये हुआ मेरे पुत्र का तिलक।
0: देवी, ये ले वस्त्राभूषण।
1: आइए पार्वती पुत्र, सजिए संवरिए।
0: आहा, क्या उत्तम छवि के स्वामी हैं बालक गणेश।
3: आओ हमारी गोद में बैठो।
2: जैसी आज्ञा माते।
0: आहा, कैसा मंगलकारी सुखदायक दृश्य है। देवी के नेत्रों से मातृत्व की अश्रुधार बह निकली है।
1: बालक गणेश भी अपनी माता की गोद में निहाल हुए जा रहे हैं।
2: माते।
3: कहो पुत्र।
2: मेरे योग्य कार्य बताएं।
3: पुत्र गणेश, हर बालक का सर्वोच्च कार्य होता है माता की आज्ञा का पालन करना।
2: माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
3: लो पुत्र गणेश, ये दिव्य छड़ी लो। अभी तो तुम मेरे द्वारपाल का कार्यभार संभालो। मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी ना अंदर आने पाए।
2: माते, कोई भी नहीं?
3: हाँ पुत्र, कोई भी नहीं। कोई बलपूर्वक या हठपूर्वक आना चाहे तो इस छड़ी का उपयोग करना, यही तुम्हारा अस्त्र है।
2: जो आज्ञा माते, आप निश्चिंत होकर स्नान करें, मैं द्वार पर जाता हूँ।
4: आहा, महामना श्री गणेश के जन्म का ये प्रसंग सुनकर मन विभोर हो उठा है। पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति हो ही गई।
5: हाँ परम ज्ञानी सूत जी, यही होता है विधि का विधान।
4: महाभाग सूत जी, अब तो प्रभु शिव शंकर के दो पुत्र हो गए, इनमें से तारकासुर विनाशक कौन बना?